0: We are Subisu Internet. Subisu, gig fiber, exceeding expectation.
1: स्मार्ट मान्छे स्मार्ट तरिका प्रभु बैंकको मोबाइल ब्याङ्किङ
2: प्रभु बैंक the reason for your success.
1: छिटो सजिलो र विश्वासिलो यस्तो हातमै पैसा दिए जस्तो प्रभु मनी ट्रान्सफर
3: प्रभुकै इच्छा
4: रोयल सुज नामै काफी छ.